सम्पर्क गुरुङ हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेड, गुरुङ मेडिकल हल, मंगलगढ़ी चोक, सुर्खेत। फोन नम्बर 083-522-148 र 520-702।

0: सब्जी मण्डीको भित्र 35 नम्बर सटरमा सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98400 46368।
1: सूचना समाचार अनि मनोरञ्जनको साथी।

0: चोक नेपालगंज नर्सिङ होमको पूर्वी गेट ठिक सामुन्ने। फोन नम्बर 081-530-105 र 97-053-00-450।
1: ये है आपका रेडियो, रेडियो टाइगर बर्दिया की आवाज़, वॉइस ऑफ बर्दिया, वॉइस ऑफ बर्दिया।

हर फुलस्ती को बनाता है ना, तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया, इसीलिए खास बात खुदा में है।

0: 个呀呀队，老哎呦哎呦，问得就得呀呀。
1: 我等你 ，Radio Tiger 哎呦。
2: युहो रेडियो टाइगर 99.2 MHz गर्जन सस्नदै बाघसिंह।
3: तुमने शादी के बाद भी ऐसी है, बिल्कुल बदलने की जरूरत नहीं
4: है। अरे वाह, आज तो शाहरुख खान निकल रहा
3: है। सच्ची? ये